0: extreme energy drink.
1: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगा

0: ਨਾਨੀਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖੁੱਲੇ ਰਾਜਿਓ शहीद मेमोरियल अस्पताल धारिंग देशी में हरेक महीना को पहले शनिवार मानसिक रोग संबंधी स्वास्थ्य परीक्षण
1: यदि तपाई वा परिवार का कुनै सदस्य में लागू औषध संबंधी दुर्व्यसनी शारीरिक निराश हुने काम में मन नलाग्ने आलस्य हुने निन्द्रा नलाग्ने बिर्सने शरीर झुमझम हुने धेरै डर लाग्ने मुटु ढुकढुक हुने धेरै शंका गर्ने अस्वाभाविक व्यवहार देखाउने आत्मबल कमजोर हुने बच्चाहरूमा सुस्त मनस्थिति आउने समस्याहरू छन् भने हरेक महीना को पहिलो शनिवार शहीद मेमोरियल अस्पताल धादिङ सीमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस्।
0: स्वास्थ्य परीक्षण पारिंग स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान का वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन लेखक बाट स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ।
1: फेरी सुन्नुस् है त शहीद मेमोरियल अस्पताल धादिङ सीमा हरेक महीना को पहिलो शनिवार मानसिक रोग वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन लेखक बाट स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ।
0: थप जानकारी को लागि 010-520-238 र 010-520-263 मा सम्पर्क गर्नुहोस्।
1: स्वस्थ समाज निर्माण को लागि शहीद मेमोरियल अस्पताल प्रणाली धादिङ देशी द्वारा जनहित में जारी संदेश।
2: सरकारी शुल्क में निजी अस्पताल में उपचार काठमांडू को वसुंधरा स्थित 100 बेड को मल्टी स्पेशलिटी केबीसी जनरल अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक र आधुनिक प्रविधि सहज र गुणस्तरीय उपचार अब सरकारी मूल्यमै पाउनुहोस्। 24 घंटा आकस्मिक सेवा, ओपीडी सेवा, शल्यक्रिया सेवा, साथै ल्याब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इको, इंडोस्कोपी लगायत आधुनिक रेडियोलॉजी सेवाहरुको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। केबीसी जनरल अस्पताल संपर्क नंबर 01-4985-910, 01-4985-911। तपाईको स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता।
3: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।

0: देखी ना की मुटियो जानामा पिछकियो मसी सबै लेते लालातामा
1: सुनो सभी अन्न पालो में